मोहन। आकांक्षा की ठीक बाद हिंदी में समाचार सुनिएगा 11 बजे और रंजन अरनेजा लेकर आएंगे बॉलीवुड ट्रेल्स सुबह 11:02 से। वेस्टर्न म्यूजिक पर आधारित हमारा एक और कार्यक्रम होगा प्ले इट कूल, जिसे आकांक्षा मोहन लेकर आएंगी 12:02 से दोपहर को। रंजन अरनेजा, जैसा कि मैंने बताया, एक बार फिर से हाजिर होंगे मेरा वाला सॉन्ग के साथ दोपहर 1:02 से।

महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। ये थे मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। आइए जुड़ते हैं अगले कार्यक्रम के लिए बस थोड़ी सी देर में।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं रेनबो 102.6 दिल से दिल तक।
2: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो के सफर में। आप सुन रहे हैं सुप्रभात और मैं हूं आपके साथ नुपुर कुलश्रेष्ठ। हर एक नई सुबह अपने आप में नए सपने लेकर आती है, उन सपनों को पूरा करने की पूरी उम्मीद के साथ आती है। एक नया उजाला, एक नया सफर।

जी हाँ, यही सत्य वचन है कि मनुष्य सर्वदा अपने लाभ की चिंता करता है और इसीलिए जल्दी शैतान के बहकावे में आकर गुनाहों में गिर जाता है। दोस्तों, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि अगर मनुष्य परमेश्वर के वचन को थामे रहे और उसका अनुसरण करता रहे तो परमेश्वर सदा सदा उसकी हिफाजत करता रहेगा और अपनी आशीषों से

जी हाँ, परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए उसके धर्म और राज्य की खोज करना होगा। अपने आप को धन दौलत के पीछे भागने से बचाना होगा।

सफर है जो इतना सुहावना है। तो हम सोचते हैं कि अकेले अगर आप हैं और सफर पर निकले हैं और बढ़ रहे हैं आगे, तो कई बार ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं और एक अकेलेपन को हम समझ लेते हैं कि अकेले रहना तो एक सजा है ना, क्योंकि कभी खुद से हमने मोहब्बत ही नहीं की, खुद की अहमियत ही नहीं समझी, है ना। साथ हैं सब लोग लेकिन फिर भी खुद के बारे में सोचा ही नहीं। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो अकेलापन जो हम एक समझते हैं कि एक सजा है, लेकिन ये सजा नहीं है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अकेलापन प्रकृति का वो दरवाजा है जो इंसान को उसकी असली ताकत तक ले जाता है।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: हम बात कर रहे हैं कि जब इंसान खुद को समझ लेता है तब दुनिया उसे कभी कमजोर नहीं कर सकती। इसलिए कुछ भी क्यों ना हलचल हो रही हो, कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, खुद को हमेशा पहले से बेहतर बनाने की तैयारी करते रहें, क्योंकि हमारा जो भी है ना वो खुद से है। खुद को समझना, खुद को जानना, और दुनिया आपको तब तक नहीं पहचानती जब तक आप खुद को नहीं पहचान लेते, और खुद को पहचानने के लिए कुछ समय दुनिया के शोर से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि बाहर की जो आवाज़ें हैं ना वो मन को भटकाती हैं, लेकिन भीतर की आवाज़ जीवन का सही रास्ता दिखाती है। इसलिए अगर आपको ज़िंदगी अकेला कर रही है तो डरिए मत, हो सकता है ईश्वर आपको भीड़ से अलग करके कुछ बड़ा बनाने की तैयारी कर रहा हो। जिस दिन इंसान

हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे एक बेहद खास प्रोग्राम में संदेश टू सोल्जर्स, और इसमें आपके साथ होंगी गीतिका उनियाल और आज के जो हमारे गेस्ट हैं आप हैं कर्नल शैलेंद्र प्रताप सिंह, रिटायर्ड ऑफिसर इंडियन आर्मी। सिटी की खबरों के साथ एक बार आपके साथ जुड़ेंगी मीना जैन और आप सुनेंगे प्रोग्राम सिटी लाइट्स 5 बजे से लेकर 6 बजे तक, और उसके बाद इस समय है मैसेज मसाला मिक्स का, इसमें आपके साथ होंगी रमा यादव, और उसके बाद आप सुनेंगे वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम हिट्स एंड मेमोरीज, और इसमें आपके साथ होंगे रघु, और उसके बाद 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप सुनेंगे म्यूजिक मस्ती, रमा यादव होंगी आपके साथ इस कार्यक्रम में। आपकी याद आती रही आप सुनेंगे जरी नाज के साथ, और उसके बाद समय रहेगा ऑल दैट जैज प्रोग्राम का, इसमें

राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए। वहीं लंबी कूद में मुरली श्री शंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या अब 15 हो गई है, जिनमें 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में एचएस प्रणय, थारून मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज ने अपने अपने मुकाबले जीतकर दूसरे दौर में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में उन्नति हुड्डा, तान्या हेमंत, अनमोल खरब और तन्वी शर्मा ने भी जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। ये थे एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

सीरीज में उरुग्वे ने मोंटेवीडियो में अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर पहला फीफा विश्व कप जीता था। 1932 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में 10वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। 1956 में इन कॉड वी ट्रस्ट को अमेरिका का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बनाया गया था। 2003 में मैक्सिको में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात पिरामिड्स में से एक की खोज की गई थी और उसकी घोषणा हुई थी। 2007 में चीनी वैज्ञानिकों ने झेंगझाओ में लगभग

वेलकम बैक लिसनर्स, गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR में ज्योति आपके साथ है और समय फिर से मिला सकते हैं 7:20। और जो नए लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनका मैं फिर से स्वागत करती हूं और आपके मैसेजेस भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगहों से। और आज का दिन बहुत खास है, जैसे कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हमारा एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। एक इंसान दूसरे से बहुत कुछ उम्मीद करता है और बहुत कुछ सीखता भी है, मगर कभी कभी कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो हम इंसानों के लिए नुकसानदायक होते हैं। और आज का दिन 30

में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ाना ताकि सभी लोगों को इसके बारे में पता चले, और जो पीड़ित होते हैं, विक्टिम्स होते हैं, उनके राइट्स की रक्षा करना, उनको प्रोटेक्ट करना, और इस अपराध के खिलाफ जो वैश्विक स्तर पर कार्रवाई होती है उसको बढ़ावा देना। और आज के दिन बहुत सालों से इस दिन शिक्षा, महिला सुरक्षा और बाल अधिकारों से जुड़े बहुत इंपॉर्टेंट आयोजन किए जाते हैं, ऐसे अभियान चलाए जाते हैं जिनमें जागरूकता दी जाती है। और मानव तस्करी है क्या? मानव तस्करी वो अपराध है जिसमें लोगों को धोखे से या लालच से या किसी दबाव से या किसी बल के इस्तेमाल से उनको कहीं पे भर्ती किया जाता है, या उनको इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या खरीद फरोख्त करके उनका शोषण किया जाता है ताकि उनसे जबरन मजदूरी कराई जा सके, या उनसे बाल श्रम की कराया जा सके, उनसे भीख मंगाई जा सके, और या फिर जबरन विवाह भी इसमें शामिल होता है। तो इसका उद्देश्य यही है आज के दिन को मनाने का, कि मानव तस्करी के प्रति जागरूकता फैलाना और जो पीड़ित हैं उनकी सुरक्षा और उनके दोबारा से पुनर्वास सुनिश्चित करना, सरकारें, संस्थाएं और समाज को इस अपराध के विरुद्ध मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित करना, और हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना होगा। और इसमें हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हमें अपने आसपास ऐसी कोई एक्टिविटी नजर आती है तो हमें उसकी सूचना देनी होगी, उसे रोकना होगा। तो हमें संदेश यही मिलता है कि मानव कोई वस्तु नहीं है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षित जीवन का अधिकार है। हर किसी को फ्रीडम, रिस्पेक्ट और

हर दिन पदक आ रहे थे। भारतीय झोली भरने के काम का वजन भी उन्होंने ही उठा रखा था। हालांकि पिछले बर्मिंघम खेलों के 3 स्वर्ण सहित 10 पदकों की बराबरी तो इस बार नहीं हो पाएगी, लेकिन अब पदकों की जिम्मेदारी मुक्केबाजों ने उठा ली है। एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। एथलेटिक्स में ट्रैक और फील्ड दोनों में ही अब भारतीय मजबूत दावेदारी ठोकने में सक्षम दिख रहे हैं, तो तैराकी और बोल्स में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने की कोशिशें जारी हैं। और पैरा खिलाड़ियों के जज्बे को तो सलाम है हमेशा ही। राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 का 7वां दिन और सारे विवरण के साथ उपस्थित हैं हम। भारत के बेस्ट लॉन्ग जंपर शिशंकर मुरली की कहानी साहस, संकल्प और इच्छा शक्ति की एक मिसाल है।

0: एशियाई खेलों में दो दिन में दो पदक जीते थे, 3000 मीटर स्टीपल चेस और 5000 मीटर में। 3000 मीटर स्टीपल चेस में वही प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद थी, लेकिन ये दिन उनका नहीं था। वो पांचवें स्थान पर रहीं 9:26.75 सेकंड्स के साथ।
1: The stunning 1-2 finish marked a watershed moment in Indian para-athletics history, etching Dilip Mahadugavit and Mohammad Basil into the

0: कि टाइटलिन फ्रेयर्स को ये एहसास करा दिया कि क्यों उन्हें जायंट किलर कहा जाता है। एक तरफा बाउट रही 5-0 से साक्षी सेमीफाइनल में। दूसरी बाउट में थी राजस्थान से आने वाली पहली इंटरनेशनल बॉक्सर अरुंधति चौधरी। न्यूजीलैंड की मॉर्गन हेंडरसन से कांटे की फाइट हुई। दूसरे राउंड में अरुंधति ने बढ़िया प्रहार किए और विपक्षी ने एक पेनल्टी भी खाई। निर्णय एकमत नहीं रहा और 3-1 से अरुंधति के पक्ष में गया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, स्पेशली मैं मेरी जीत को मेरे छोटे भाई को डेडिकेट करना चाहूंगी। और आज आसान तो नहीं था बट अच्छा रिजल्ट आया। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आए तो इसीलिए है कि गोल्ड लेना है, ये तो बस एक सीढ़ी थी।
0: और अब बारी थी लड़कों की। भिवानी के ही सचिन सिवाच के सामने बोत्सवाना के ट्रेजर मॉर्गी थे। वो कोई प्रतिरोध खड़ा नहीं कर सके। तीनों राउंड में सचिन के मुक्के ही मुक्के लगातार दिखते रहे रिंग में और 5-0 से एक और निर्णय भारत के पक्ष में। तो अब उत्साहित अंकुश पर भला कौन अंकुश लगाता। सेशल्स के जेड मिकॉक तो पूरी कोशिश करके भी नहीं लगा सके। अंकुश के मुक्कों के आगे बेबस हो गए और सर्व

जी हाँ, सावन का ये जो महीना है इसकी शुरुआत हो गई है। और तो सावन का ये जो महीना है और इतना खूबसूरत सा ये महीना है, जहाँ जब बारिश और आप और हम और उसका आनंद, और कई बार परेशान भी हो जाते हैं कि रास्तों पे जाम लग जाता है, घर आने में देरी हो जाती है, उसके बाद थोड़े से परेशान भी होने लग जाते हैं। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, जब श्रावण मास की शुरुआत होती है तो जो कांवड़ यात्रा है वो भी शुरू हो जाती है, और जो कांवड़ यात्रा है उस दौरान आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको किया गया है, और डाइवर्जन जो प्लान है उसको बहुत अच्छे से तैयार किया गया है। और अगर इसकी बात करें तो ईस्टर्न जो रेंज है वहाँ पर इसका ज़्यादा असर देखने को मिलता है, क्योंकि कांवड़ियों का जो मूवमेंट है वो दिल्ली के इन इलाकों में ज़्यादा होता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो यात्रा है वो 11 अगस्त तक चलेगी, और इस दौरान जीटी रोड, वजीराबाद रोड, विकास मार्ग, आशाराम त्यागी मार्ग, पुस्ता रोड और लोनी रोड पर हैवी ट्रांसपोर्ट

अगस्त तक चलेगी और इस दौरान जीटी रोड, वजीराबाद रोड, विकास मार्ग, आशाराम त्यागी मार्ग, पुस्ता रोड और लोनी रोड पर हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का जो मूवमेंट है वो बैन रहेगा। और NH 9 और NH 44 से होते हुए आप जो आपका डेस्टिनेशन है वहां तक आप पहुंच पाएंगे। और साथ ही साथ अप्सरा बॉर्डर से यमुना ब्रिज के बीच जीटी रोड पर 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त की शाम तक जो सामान्य आवाजाही है वो भी रोक दी जाएगी। लेकिन आपकी जो यात्रा है वो बहुत ही अच्छी रहे उसके लिए दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर 30 जुलाई से 14 अगस्त तक जो ट्रेन है उनकी जो संख्या है उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। और साथ ही जो 10 मिनट के अंतराल पर ट्रेन चलती थी वो अब 8 मिनट के अंतराल पर चलेगी और साथ ही साथ 52 एक्स्ट्रा राइड्स जो है वो ट्रेन करेगी। तो इसलिए आपका जो सफ़र है वो बहुत ही सुहावना हो, इस सुहावने से मौसम में आप भी खुश रहें और हमारे जो कांवड़ यात्रा होती है जो कांवड़ियाँ हैं वो भी खुश रहें और हर तरह से हैप्पी हैप्पी होके सबके सब काम हो जाएं तो कितना अच्छा लगता है ना। अच्छा लगता है जब हम सबके चेहरे पर एक स्माइल होती है और ये स्माइल, ये खुशियाँ, और खुशी के लिए ही तो सब कुछ है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सफ़र में यूं ही गाते गुनगुनाते आगे बढ़ते रहिए।

0: आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: पानी पानी पानी पानी से जीवन हमारा, कैसे बचाएं इसको मिलकर सोचे जरा। पानी जरूरी है जीने के लिए, आओ बचाएं इसको सबके लिए। दोस्तों, तालाब पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पीने, सिंचाई और अन्य घरेलू उपयोगों के लिए आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो तालाब अक्सर पीने की आपूर्ति का मुख्य स्रोत बनते हैं।

एडमिनिस्ट्रेशन। तो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो प्रोसेस है वो भी अलग होगा। किसी में आपका बिल्कुल आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और अगर हम बात करें तो कई मेरिट के आधार पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये जो सारी जानकारी है वो आप यहाँ पर जाकर ले सकते हैं एडमिशन पोर्टल पर। और तो जितने भी ये जो यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स

बचाना है, अलर्ट होना है, इसलिए अवेयर रहें जहाँ भी जाएं, बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, और उनको भी समझाएं, उनके साथ किसी बड़े का होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ छोटी छोटी बातों को जानकर समझकर चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो पूरा अपना ध्यान रखें और सजग रहें, अलर्ट रहें और आगे बढ़ते रहें। जुड़े हुए हैं आप हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो के इस सफर में। आप सुन रहे हैं सुप्रभात, माफ कीजिए, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। सुप्रभात का जो सफर है वो हो चुका है, और एक बहुत ही खूबसूरत सा ये जो गाना है वो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ, और आप जब जागे तभी सवेरा, और ये प्यारी सी सुप्रभात, हाँ गुड मॉर्निंग आप ही के लिए है, और गुड मॉर्निंग।

अब वक्त हुआ है एफएम रेनबो पर मुख्य समाचारों का। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। राज्यसभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने और इसके अपमान को अपराध घोषित करने संबंधी विधेयक पारित किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी। बिहार

0: Hey listeners, good morning and welcome back again. दिल के तराने गाने नए पुराने में आपका स्वागत है. और पता है मौसम क्या कर रहा है, कभी धूप आ रही है कभी बादल आ रहे हैं. दिल्ली NCR में दोपहर तक बारिश हो जाएगी, हम मौसम को एंजॉय कर पाएंगे. मगर हाँ, उसके बाद ह्यूमिडिटी फिर से बढ़ जाएगी. मगर कोई बात नहीं, गानों के साथ और रेनबो के शोज के साथ ये हमारा आज का दिन भी बहुत खूबसूरत बीतेगा.
1: दिल के तराने गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर.

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों के

0: और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं।

0: So stay tuned and we'll be right back.
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: right back.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2017

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: Welcome back to the Matchless Music Hour, only on 102.6 MHz, Akashvani Rainbow. And now I have a Swedish group singing about exactly the kind of nostalgia we are celebrating on the show today. Yes, it's ABBA with the song The Way Old Friends Do.

आज अत्यधिक तेज बारिश होने की संभावना है। आज इन जिलों में बारिश का ऑरेंज जबकि 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर की T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए। इस श्रेणी में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। वहीं लंबी कूद में मुरली श्री शंकर ने रजत पदक जीता। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

बताएंगे। तो आज अगर आप इसका सही जवाब देते हैं तो आप बन सकते हैं बॉलीवुड सरताज। मैं हूं रंजन आपके साथ। और हाँ, इस सवाल का जवाब दें उससे पहले मुझे बताइए, ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? क्या आपने ये शब्द सुना है, ब्रह्म मुहूर्त? इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्वता है, बताइए हमें थोड़ी देर में। अगर आप चाहें तो यू कैन शेयर दैट।

प्रवीण चौहान का हमारे पास मैसेज आया है खरगोन मध्य प्रदेश से, और लिखते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5:15 बजे का होता है। आपने समय लगभग सही बताया है, और रोज ब्रह्म मुहूर्त का समय अलग हो सकता है, या फिर आप देश के किस कोने में रहते हैं उसका समय के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त अलग हो सकता है। अगर मैं अभी दिल्ली की बात करूं तो 11:14 पर मैंने अपने कंप्यूटर जी से पूछा कि इस समय कौन सा मुहूर्त है, तो इन्होंने बताया कि चौघाड़िया नाम का इस समय काल चल रहा है, जो वीनस से रूल्ड होता है। एक्टिव टाइम 11:45 से लगभग 12:27 तक है। तो जितना ये प्रोग्राम चलेगा हम अच्छे उसमें हैं, और राहु काल दोपहर चालू होगा। अब इतनी सारी गणना है मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है आज सुबह 4:30 के करीब ट्रेलर लॉन्च हुआ है रामायण फिल्म का, जो दो पार्ट में बन रही है। 4,000 करोड़ के ऊपर इस पे रुपए खर्च किए गए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत ट्रेलर लगा मुझे भी। एंड इनफैक्ट जो म्यूजिक है उसका बैकग्राउंड स्कोर है उसमें यार रहमान एंड हंस जिमर का नाम रहा। तो

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स और आज हमारे इस कार्यक्रम में एक नहीं बल्कि दो सोनू छाए रहेंगे। उसका कारण है कि आज बहुत मुबारक, बहुत खास दिन है। आज सोनू निगम एज वेल एज सोनू सूद दोनों का ही जन्मदिन है। दोनों का जन्म आज की तारीख 30 जुलाई को हुआ था एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दोनों का ईयर भी सेम ही है। तो बॉलीवुड को, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को न सिर्फ बेहतरीन आवाज, बेहतरीन कलाकार, सिंगर मिले सोनू निगम के रूप में, बल्कि सोनू सूद के रूप में एक बड़े अच्छे एक्टर, डायरेक्टर एंड एज वेल एज प्रोड्यूसर मिले। हम बात कर रहे हैं सोनू निगम की, क्योंकि सोनू निगम जो हैं वो बहुत सारे गाने गा चुके हैं आज तक। लगभग 6,000 से ज्यादा इन्होंने गाने गाए हैं, 32 से ज्यादा लैंग्वेजेस में इन्होंने गाने गाए हैं। इन्हें हमारे देश का बहुत ही सम्मानित अवार्ड यानी पद्मश्री

से इन्हें सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड 2 बार जीता है। उसके अलावा आईफा अनगिनत अवार्ड्स जीत चुके हैं। आपको ये बहुत लंबे समय तक टीवी के ऊपर जज के रूप में भी दिखाई दिए। इन्होंने एक्टिंग में भी अपना हाथ आजमाया, लेकिन सोनू निगम के खुद ये शब्द हैं कि वो एक अच्छे एक्टर नहीं है, और हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं। बट इनके जैसा लाजवाब सिंगर दूसरा अभी तक तो नहीं हुआ है। तो सोनू निगम, आकाशवाणी की पूरी टीम की तरफ से आज के दिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू।

कि सोनू निगम का आज बर्थडे है एंड नॉट टू फॉरगेट सोनू सूद का भी जन्मदिन है। से जुड़ा मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, अगर उसका जवाब आप करेक्ट देते हैं तो आज हो सकता है आप बन जाएं बॉलीवुड सरताज। हमारा सवाल है, हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के अंदर सोनू सूद ने जो कैरेक्टर प्ले किया था उस किरदार का नाम बताएं और मौका पाएं आज बॉलीवुड सरताज बनने का। और जो

आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स आकाशवाणी रेनबो पर। ये सफर जो जारी है 90 वर्षों से अधिक और हम आप तक पहुंचते हैं साल के 365 दिन और लीप ईयर में जाहिर सी बात है एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो फिर आप कहाँ खोए हैं, अभी तक क्यों सोए हैं? हमारे साथ अगर जुड़ गए हैं तो नंबर हमारा जो दिया था उस पर मैसेज करने के लिए अभी भी समय है। नंबर एक बार फिर दोहराता हूँ, 9868107070, दैट्स 9868107070। यहां पर कीजिए व्हाट्सएप और हमें बताइए हैप्पी न्यू ईयर मूवी के अंदर सोनू सूद ने जो कैरेक्टर प्ले किया था उसका क्या नाम था, और अगर आप सही जवाब देते हैं तो किसी एक को हम चुनेंगे आज और बनाएंगे बॉलीवुड सरताज जस्ट लाइक ऑलवेज। आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ट्रेल्स और एक बात और है,

नाम वाराणसी है, एंड उनके साथ हमारे सुपरस्टार साउथ के, उनके साथ वो महेश बाबू के साथ उन्होंने फोटो अपनी डाली है, साथ में उनके हस्बैंड भी हैं इस फोटो में। तो फिर देखना होगा कि ये मूवी कैसी बन रही है, और बहुत मेहनत का काम होता है शूट करना, स्पेशली आउटडोर शूट्स में, एंड वो और भी ज़्यादा कई दफ़ा ट्रबलसम हो जाता है जब आप दूसरे शहर नहीं बल्कि दूसरे देश से फ्लाई करके आते हैं और अपना कमिटमेंट को पूरा करते हैं। फिलहाल आपको बस ये गाना अगला सुनाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर में किसी को बनाएंगे बॉलीवुड सरताज। तो बस जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत सारे सही जवाब आए हैं। इंदु अलावत कह रही हैं कि ब्रह्म मुहूर्त जैसा कुछ नहीं होता है, ये आपकी सोच है, हम उसका भी रिस्पेक्ट करते हैं। यू आर फ्री टू थिंक व्हाट यू थिंक।

0: यहाँ दुश्मन के छक्के छुड़ा दें इंडिया वाले, और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हमारी जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं, काफी पदक जीत रहे हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे आज के बॉलीवुड सरताज, देखते हैं कौन बने हैं हमारे साथ, कौन है। हेलो।
1: हेलो सर।
0: गुड मॉर्निंग। नमस्ते।
1: गुड मॉर्निंग। नमस्ते
0: जी, अपना नाम बताएं।

0: संकल्प लेना है, हमारे तालाबों को बचाना है, तालाबों की रखरखाव की जिम्मेदारी ले, आने वाले भविष्य को सुरक्षित करें। डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स और HCL फाउंडेशन के सहयोग से।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदल

जी हाँ, कहर कुड़े गुरु रंधावा की आवाज में गाना सुन रहे हैं धमाल फोर से। अब समय ज्यादा नहीं है क्योंकि दिस मुंडा इज गोइंग टू गो आउट ऑफ द स्टूडियो और द नेक्स्ट कुड़ी इज इन द स्टूडियो। आकांक्षा मोहन आपके साथ रहेंगी विद द नेक्स्ट प्रोग्राम, आई थिंक प्ले इट कूल। यस, प्ले इट कूल रहेगा आपके साथ अगला कार्यक्रम। यहाँ पर रंजन को दीजिए इजाजत, सोनू सूद को एक बार फिर से ढेरों शुभकामनाएं उनके बर्थडे की। इनकी बड़ा गजब के एक्टिंग रही इनके काफी अच्छा काम मुझे लगा हैप्पी न्यू ईयर के अंदर, जोधा अकबर मूवी के अंदर, आर राजकुमार, सिम्बा, यू नेम इट, एंड इज वर्क सो वेल इंटेंसिवली। इतना ज्यादा काम इन्होंने साउथ में इनिशियली किया था, उसके बाद इन्होंने बॉलीवुड के अंदर ब्रेक किया। और क्या काम किया, सबसे बढ़िया काम तो दोस्त सोनू आपने पूरे देश का दिल तब जीता जब आपने सब लोगों की घर वापसी कराई थी कोरोना काल में। वी स्टिल रिमेम्बर दैट, यू आर सच अ डार्लिंग, सच अ स्वीट हार्ट। आज का दिन आपको हो मुबारक आकाशवाणी की टीम की तरफ से, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे सोनू सूद। रंजन कहता है ठीक है, बाय, जुड़े रहिए आकाश।

0: Now it's time for a short break, and there is some more cool music on the other side, so stay tuned.
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कोयल सी तेरी बोली,
5: हाय
4: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
5: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
4: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
5: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
6: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
0: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल हियर।

राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत दोनों पदक अपने नाम किए। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आपकी वाणी आकाशवाणी पर दोपहर के समय थर्सडे के दिन हम क्या करते हैं? आई डोंट नो व्हाट टू से, मुझे नहीं पता, आप बताइए। क्योंकि ये आपका अपना खास कार्यक्रम शुरू हो जाता है जहां आपकी पसंद और नापसंद का हम खास ख्याल रखते हैं। आपकी पसंद का खाना तो आप

आपसे कोई किराया मांगे भी तो कैसे। खैर, नमस्कार जी। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से लिखते हैं जयराम खोरवाल। सचिन अमन दीपांशु खोरवाल, फिल्म दो चॉइसेस इन्होंने मुझे दी हैं, दो क्यों तीन दी हैं, बट मैंने जिस पे नजर डाली थर्ड चॉइस पे मेरी नजर पहले चली गई। बताओ कमाल है, है जी, क्योंकि हमारे पास समय बड़ा कम होता है। बड़ी सारी चॉइसेस में से हमें झटपट झटपट झटपट ढूंढना पड़ता है। पहले आपका मैसेज पढ़ना पड़ता है, फिर हमारे पास दो कंप्यूटर स्क्रीन्स होती हैं, उस पर जाके एक से गाना चल रहा है, दूसरे में ढूंढना है। मतलब आप समझा करो यार, बच्चे की जान लो। रिमझिम गिरे सावन आपकी पसंद का गाना फ्रॉम द मूवी मंजिल, किशोर दा की आवाज में। मौसम भी है, दस्तूर भी है, आकाशवाणी पर सावन का छाया, ये

मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ लिख रहे हैं और बड़ी सारी फिल्मों की इन्होंने यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजी है और लगता है बच्चन साहब के बहुत बड़े फैन हैं क्योंकि तीन फिल्म तो बच्चन साहब की दिख गई भाई, इनके चार फिल्म एंड आई थिंक

0: की ये प्लेलिस्ट मैं नहीं बना रहा, आप लोग बना रहे हैं, और इसमें कुदरत अपना एक रोल अदा करती है कि किसका मैसेज मुझे कहाँ दिखा। फिर उस गाने को मैंने अपना सिलेक्ट किया और वो मुझे फिल्म तो मिली, लेकिन उसका गाना नहीं मिला। और कोई गाना मिला तो तभी मिला ना जब उसकी फिल्म थी कंप्यूटर में, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं मिला। तो खैर, आपकी पसंद का जो गाना है वो है आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो।
1: अरे ना ना ना ना ना ना ना
0: लगता है कहीं दिल्ली के अलावा तो और जगह बारिश हो रही है, दिल्ली के कुछ इलाकों में हो

ये गाना है नी सुल्ताना रे और फिल्म का नाम है प्यार का मौसम। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपके अपने पसंदीदा चैनल आकाशवाणी रेनबो पर आपकी अपनी प्लेलिस्ट जो आप बनाते हैं सब श्रोता मिलके हमारे थोड़े से योगदान के साथ कार्यक्रम कहलाता है मेरा वाला सॉन्ग।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

अपने जमाने की ब्लॉकबस्टर मूवी रोटी कपड़ा और मकान से लता जी की आवाज में आप ये गाना सुन रहे हैं। और देखिए कितना तार्किक, कितना ही सही ये गाना है। ये फिल्म तो हर दौर के अंदर ऐसी फिल्में बनती रहती हैं और ये फिल्म भी कुछ अलग नहीं है।

सही बताऊं मैं, आप लोग जो है ना इधर आ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए। क्या आपने समा बांधा है भाई? बारिश के गीत, सावन के गीत, और मैं एक बताऊं, इन गीतों से मुझे हो गई है प्रीत और मन की लगन लग गई है। कैसी कैसी मैं बात करूं, दिल की धड़कन बढ़ गई है। आप सब लोगों ने क्या टीम अप कर लिया है क्या कि आज कुछ ऐसा ही समा बांधा है? मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं। देखिए, जो नेक्स्ट मैसेज मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये है उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोध राज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, और फिल्म अनजाना का इन्होंने जो गीत रिक्वेस्ट किया है वो है रिमझिम के गीत सावन गाए। वाह वाह वाह वाह। तो मतलब यू वांट मी टू कंटिन्यू विद दिस? ये रंग यूं ही चलता रहे, बारिश यूं ही बरसती रहे, गीत यूं ही आसमान से फूलों की वर्षा की तरह आप पर आते रहें, भिगोते रहें।

0: ऐसे बन के साथी रहूं मैं।
1: जी मेरी कोशिश तो है कि नॉन स्टॉप आपको मैं गाने सुनाता रहूं, लेकिन क्या करें, ब्रेक भी लेना है, मजबूरी है। फिर छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौट के आते हैं। बस यूं गए और यूं आए। और स्पेशली कहना चाहूंगा राधे श्याम साक्या।

आपकी जो पसंद है, कौन दिशा में लेके चला रे, फ्रॉम द मूवी नदिया के पार। सो मास्टर राधेश्याम साकिया जी, आपकी पसंद ऑन एयर हो गई है। जब बरसात बहेगी, बरसात पड़ेगी तो पानी बहेगा, पानी बहेगा तो सड़क गीली होगी और नदी नाले अपने पूरे जोश में, जोश खरोश

और जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, बस जाते जाते एक आध रिक्वेस्ट और हो सकती है, हम स्क्वीज इन कर दें। और आप हमें भेजिए मैसेज, व्हाट्सएप कीजिए 9868 10 70 70 पर, दैट्स 9868 10 70 70। व्हाट्सएप कीजिए अपनी पसंद का गाना, फिल्म का नाम, गाने के बोल, अपना नाम और भेज दीजिए।

जी बस अब समय इतना ही है मेरे पास और मुझे आपसे कहना पड़ेगा टाटा बाय बाय, और आपसे होगी फिर मुलाकात इन एयरवेव्स पर फिर कभी। अगला कार्यक्रम गीतिका लेके आएंगी 2 बजे से, कार्यक्रम रहेगा आशियाना। तो हमारे साथ आकाशवाणी पे यूं ही जुड़े रहिएगा। जाते जाते एक जो रिक्वेस्ट डॉली ने भेजी है हमें, वो हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं। दामिनी फिल्म का गवाह है, चांद तारे गवाह है, इन्होंने सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है। तो ये आज हमारे प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग रहेगा। आपने हमारे इस कार्यक्रम में ढेर सारे गानों की रिक्वेस्ट की, कुछ गाने हम इसलिए नहीं बजा पाए, जैसे किसी ने राम जाने फिल्म का रिक्वेस्ट किया, वो हमारे पास नहीं है। एक IRS साहब के मेरे पास मैसेज आया था, आपकी पसंद का गाना भी नहीं था इसलिए मैं नहीं बजा पाया। तो कोशिश किया करें आप एक से ज्यादा

नमस्कार, अब पेश है अब तक के मुख्य समाचार। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया जाएगा। लोकसभा ने कल इसे पारित कर दिया। नीट परीक्षा मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएसएसवी त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से आज नई दिल्ली में बातचीत कर उनकी असाधारण उपलब्धि और दृढ़ संकल्प की सराहना की। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। सुबह 11 बजे तक गुजरात के मांजलपुर सीट पर 14%, मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर 32% और बिहार की बांकीपुर सीट पर लगभग 12% मतदान।

रोके रखते हैं अपनी जड़ों में, वहां मच्छर होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने घर के बुजुर्गों के लिए ख्याल रखना है कि घर में किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े अंदर एंटर ना करें। पार्क में अगर आप उनको लेकर जा रहे हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप उन्हें जरूर घुमाने ले जा रहे हैं, लेकिन आपको उन्हें बचाना है, क्योंकि अगर एक कीड़े मकोड़े ने काटा तो उन्हें परेशानी हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। और इस मौसम की यही खासियत है, जहां खुशियां लाती है वहां बहुत सारी बीमारियां भी लाती है। तो अपने साथ साथ, अपने घर के बच्चों के साथ साथ, आपको अपने घर के बुजुर्गों का खास ख्याल रखना है। अब इसके साथ साथ

0: सूचना 8 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: बैक में हूँ आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल और प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है आशियाना, और आशियाना में हम बात कर रहे हैं अपने घर

सारी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जन्म लेती हैं, और साथ ही साथ जॉइंट पेन जो काफी सारे बुजुर्ग कंप्लेन करते हैं, इस पर भी ध्यान देना है। लगातार बॉयल खाना उन्हें खिलाते रहिए, और ये भी कोशिश कीजिए, बॉयल खाने का अर्थ यहाँ पर ये है कि आप कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाला वाला खाना उन्हें ना खिलाएं। वैसे भी बढ़ती उम्र के साथ बुज़ुर्गों को पसंद नहीं आता है बहुत ज़्यादा चटपटा खाना, तो हल्का ऐसा खाना ऐसा ज़रूर बनाएं जो प्रॉपरली कुक्ड हो, यानी कि पूर्ण

हम सलाम करते हैं और कहते हैं कि आप यूं ही चलते रहें और ये सफ़र यूं ही खूबसूरत बना रहे। लेकिन मौसम के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, इम्यूनिटी बुज़ुर्गों की वक्त के साथ कम हो जाती है और जैसे जैसे सीज़न बदलते रहते हैं इम्यूनिटी की वजह से शरीर पर गहरा असर पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है, कोशिश करनी है इस मौसम में, टाइफाइड के चांस, मलेरिया के चांस, गैस की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो खान पान पर विशेष रूप से आप ध्यान रखें, कोई भी मेडिकेशन अगर आपके घर के बुजुर्गों की चल रही है तो उसे सही समय पर दें और डॉक्टर के पास रेगुलरली चेकअप के लिए जाएं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बारिश होती है, बारिश होने की वजह से गीला बहुत ज्यादा होता है, तो आपको इस बात को सुनिश्चित करना है कि आपके घर के बुजुर्ग कभी भी कहीं भी घर के अंदर भी ना फिसलें। वैसे तो हम हमेशा यही कहते हैं कि आपके घर के बुजुर्ग जो भी पहनते हैं, पैरों में जो भी स्लीपर्स पहनते हैं, आप सोच समझ कर उनके लिए स्लीपर्स खरीद के लाएं।

सीढ़ियां अगर आपके घर में है या आप घर के बाहर फर्श है, आंगन है, उसको भी आपको साफ रखना है बारिश के मौसम में, कि अगर घर के बुजुर्ग बाहर निकलें तो कभी भी स्लिप ना करें। तो ये सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं। मैं मानती हूं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां और भी हैं आपके ऊपर, लेकिन आपकी एक छोटी सी चूक बदल सकती है घर का माहौल। क्योंकि जब बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं या लंबे समय तक बिस्तर पर आप उन्हें देखते हैं तो दिल नहीं मानता और बहुत दुख होता है। फिलहाल हम यही कहेंगे कि आप खुशियां बांटें अपनों के साथ और खुश रहें, उनको खुश रखें जिन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियाँ लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयु

0: दीजिए।
1: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
2: श्रोताओ, आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम। शीर्षक है पहली।

मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय

0: मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
1: देखो मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
2: हाँ ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
1: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
2: हाँ मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
0: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
1: चलो अरे
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लुहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
4: चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो

0: खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
1: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
0: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
1: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
0: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया जिससे पाश्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया जिसे उन्होंने नाम दिया

0: मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
1: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ,
0: मेरा अच्छा, बेटा।
1: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
2: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
2: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पास्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पास्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
2: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पास्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पास्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पास्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पास्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की

नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी दोस्त और मेजबान शिल्पा गुप्ता। कहते हैं स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसके बारे में जागरूकता और समय पर टीकाकरण लाखों महिलाओं की जिंदगी बचा सकता है। रेडियो डॉक्टर में हमारा आज का विषय है सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन। आज हम जानेंगे HPV वैक्सीन क्या है, किस उम्र में लगवानी चाहिए और कैसे ये हमारी बेटियों और महिलाओं को एक गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। इसी पर बात करने के लिए आज

0: ये सारे सिम्टम्स हैं जिससे कि हमें पता चल जाता है कि ये सर्वाइकल कैंसर के लक्षण हैं, और इसलिए तुरंत ऐसा होने पे तुरंत डॉक्टर के पास जाना सही रहेगा।
1: और हम बचाव कैसे कर सकते हैं?
0: जी, बचाव के लिए चूंकि हमें पता है कि ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है, तो आजकल हमारे पास HPV वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, और HPV वैक्सीन्स लगाने से हम सर्वाइकल कैंसर को, HPV इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं। सो अगर HPV इन्फेक्शन

0: कुछ ही वेरिएंट्स के लिए हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो कार्सिनोजेनिक वेरिएंट्स हैं, जो अलग अलग तरह के वैक्सीन डेवलप हुए, किसी में 4 हैं, किसी में 9 हैं एचपीवी टाइप्स, या फिर किसी में 2 ही हैं, तो फिर अलग अलग तरह के वैक्सीन हैं जिन्होंने सिर्फ 2 या 4 या 9 वेरिएंट्स एचपीवी टाइप को टारगेट किया है, तो इन्हीं से प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन सारे वेरिएंट्स को ये कवर नहीं करता है। तो इसलिए जरूरी है कि आपको स्क्रीनिंग कराना पड़ेगा, क्योंकि एचपीवी वैक्सीन के बावजूद भी किसी और वेरिएंट से इन्फेक्शन होगा अगर, तो फिर खतरा रह सकता है सर्वाइकल
1: तो
0: कैंसर
1: जैसे
0: का।
1: आपने अभी स्क्रीनिंग का कहा, तो स्क्रीनिंग में क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है?
0: जी, स्क्रीनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे कॉमन है और आज तक प्रचलित है, वो उसमें हम पैप स्मियर कहते हैं। इसमें जो पेशेंट है, मतलब औरतों को हॉस्पिटल जाना होता है, और वहाँ डॉक्टर जो है पैप स्मियर टेस्टिंग करते हैं, उनके बच्चेदानी के मुंह से सैंपल लेते हैं और उसको जो है वो भेजते हैं साइटोलॉजी के लिए। और उस पैप स्मियर की रिपोर्टिंग में अगर मतलब जो भी CIN, जो कैंसर के पहले के चीज़ है, वो अगर डिटेक्ट होता है, तो उसका ट्रीटमेंट तभी कर दिया जाता है ताकि सर्वाइकल कैंसर तक वो प्रोग्रेस ना करे। तो एक तो पैप स्मियर टेस्टिंग होता है। आजकल HPV टेस्टिंग जो है उसको प्राइमरी स्क्रीनिंग की तरह से यूज़ किया जाता है, तो मतलब HPV वायरस का ही टेस्टिंग हो जा रहा है। सो अगर किसी महिला में HPV टेस्टिंग पॉजिटिव आता है, तो फिर उसका आगे तुरंत इलाज कर दिया जाता है। तो दोनों तरीके हैं, मतलब आप जो अवेलेबल है।

जुड़ सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुली हैं, हमारा फोन नंबर है 2342108020, 2342108020। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन करें तो 01 लगाना ना भूलें। और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। बातें हम और भी करेंगे सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन पर, लेकिन उससे पहले सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: जी, आजकल इस पे काफ़ी रिसर्च आया है, तो HPV टेस्टिंग जो है वो खुद से महिला घर में कर सकती है। वो स्वाब्स होते हैं, टैम्पोन्स होते हैं, वो वजाइना में खुद से डाल करके और सैंपल लेके और हॉस्पिटल तक पहुंचा सकती है। और ये ऐसा माना गया है कि जो डॉक्टर सैंपल देते हैं और उसमें जो रिपोर्टिंग होती है, बिल्कुल उसके बराबर ही इसका एफिकेसी है। सो सेल्फ सैम्पलिंग मेथड जो है HPV टेस्टिंग का, उससे भी जो है वो HPV टेस्टिंग जो है आसानी से हो सकता है, और महिला को कोई घबराहट नहीं होगी कि मुझे चेकअप कराना पड़ेगा इस टेस्टिंग के लिए। तो काफ़ी आराम से वो खुद से सैंपल ले सकती है और रिपोर्ट उसे मिल सकता है। तो सेल्फ सैम्पलिंग वेरी बहुत ही अच्छा है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।

0: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं
1: नमस्कार। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, कुंवर सिंह।
0: जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका।
1: मैडम, ये जो HPV वैक्सीनेशन है, क्या मेल में भी अप्लाई होती है? दूसरा, मेल में जैसे फीमेल में तो हमें रिस्क पता है, रिस्क फैक्टर HPV होने के, मेल में क्या रिस्क फैक्टर है कि किस वजह से ये HPV जो वायरस है ये मेल को अटैक कर सकता है?
0: जी
1: दूसरा, वैसे दिल्ली में आजकल ये गवर्नमेंट भी HPV वैक्सीनेशन कर रही है स्कूल्स में, बट कई लोगों में ये मिथ है कि इसके लगाने से बाद में प्रेगनेंसी में इशू आ सकते हैं, तो थोड़ा इसे गाइड कीजिए ताकि सभी पेरेंट्स विलिंगली लगा सकें इसे। थैंक यू मैम।
0: जी आपका सवाल था, पहला सवाल कि मेल्स को क्या ये अफेक्ट कर सकता है HPV इन्फेक्शन। तो बिल्कुल कर सकता है, ये वायरस है और ये मेल

फीमेल देख करके नहीं होता है, ये किसी को भी हो सकता है, तो इवन मेल्स भी अफेक्टेड हो सकते हैं। और कैसे मेल इन्फेक्ट होते हैं, तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप में जो रहते हैं मेल्स, उनमें इसका रिस्क ज़्यादा देखा गया है। और आपने तीसरा सवाल मुझसे ये पूछा था कि क्या इसके कारण आगे जा कर के जो कम्युनिटी हेल्थ में और स्कूल्स में जो बच्चों को ये वैक्सीन लगाया जा रहा है, इसके कारण आगे जा कर के उन्हें प्रेगनेंसी करने में या आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो आप आश्वस्त रहें, इसके कारण कोई भी इश्यूज नहीं होते हैं, इसका माहवारी पे कोई असर नहीं होता है, इसको आगे जा कर के बच्चा करने में कोई परेशानी नहीं होती है, और इसका आगे जा कर के हेल्थ पे कोई भी बैड इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपके आपको सर्वाइकल कैंसर से बचाने का तरीका है। आप बिल्कुल इसकी चिंता ना करें कि इसको लगाने से मेंसेस रुक जाएंगे या फिर बच्चा नहीं होएगा लेडी को, ये सब बिल्कुल मिथ्स हैं, ये बिल्कुल भ्रांतियां हैं जिसको कि दूर करने की ज़रूरत है। और ये प्रोग्राम इन्हीं

0: भ्रांतियों को दूर करने का एक जरिया है। सो आप इस बात को और लोगों में भी जो आपके संपर्क में हैं एक दूसरे में बताएं कि इसको लगाने से कोई खतरा नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है और कोई दिक्कत नहीं है इससे आगे जा करके।
1: अक्सर जैसे कि आपने कहा था कि 9 साल की उम्र में बच्चियों को लगवा देनी चाहिए, तो यूजुअली पेरेंट्स इसलिए इग्नोर करते हैं या कई बार नहीं ध्यान देते कि कहीं कोई साइड इफेक्ट ना हो, कुछ हार्म ना हो। लेकिन आपने बहुत अच्छे से बताया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सभी को लगवा लेनी चाहिए। एक और कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो हेलो हेलो,
2: नमस्कार जी। जी
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: जी डॉक्टर बोल, नमस्कार जी।
0: नमस्ते नमस्ते
2: जी, मैं यामिन भाई रेडियो वाला सिरोड़ी सोनी की जगह
1: जी बताइए
2: जी। मैं इसमें जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर जो है ये 21 उम्र में होने के ज्यादा चांस है युवा वर्ग में,

0: भी वैक्सीन बना है तो उसको क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है। और ये वैक्सीन, जैसा कि हमने पहले भी बात किया कि ये वैक्सीन जो है वो सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट करने के तरीके हैं। सो ये HPV वैक्सीनेशन से HPV इन्फेक्शन को हम रोकते हैं, और ये इन्फेक्शन जो है ये सर्वाइकल कैंसर में डेवलप करता है आगे जा करके। सो अगर हम ये वैक्सीन लगाते हैं तो ये सर्वाइकल कैंसर से आपको बचाव देता है।
1: एक और मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम और डॉक्टर साहिबा को गुड आफ्टरनून मैम। आज का विषय खासकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए जरूरी है। मैम क्या स्कूल स्तर पर बच्चियों को ये स्कूल में लगाया जाता है? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: जी, आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशंस है कि छोटी बच्चियां जो 9 साल के 9 साल की हो चुकी हैं उनको स्कूल में ही ये एज कम्युनिटी ड्राइव लगाया जा रहा है। सो 9 साल से 14 साल के बीच में सिंगल या डबल डोज वैक्सीन का लगा सकते हैं, और इससे सर्वाइकल कैंसर से बचने की संभावना जो है वो 95-98% प्रोटेक्शन मिलता है HPV वैक्सीन से।

0: में कहा था 8 महीने हो गए या 10 महीने हो गए, हमने नहीं लगवाई
1: जी,
0: तो क्या उसका कोई नुकसान है या साइड इफेक्ट है?
1: आपने बहुत ही कॉमन सवाल पूछा है, और ये बहुत बार होता है कि महिलाएं जो हैं वो अपने हेल्थ को बिल्कुल लाइटली लेती हैं और एक डोज लगवा लिया उसके बाद दूसरे डोज का अता पता नहीं। तो जब भी आपको याद आए 6 महीना हो गया और उसके बाद आपको 8वें महीने पे याद आए या 9वें महीने पे याद आए, जब भी आपको याद आए आप सेकेंड डोज लगवा लें और दोबारा से रिपीट शेड्यूल

0: यूजुअली जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले ही हमें ये वैक्सीन लगा लेना चाहिए ताकि ये वैक्सीन जो है वो बचाव कर सके।
1: अक्सर जैसे कि आपने कहा कि सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो लेकिन कई बार होगा पेरेंट्स सोचेंगे कि हम बच्चों को अभी 9 साल या 15 साल की उम्र में क्यों लगवाएं, जब शादी हो जाएगी बाद में लगवा देंगे।
0: नहीं, वो एक्चुअली मतलब ये बहुत बार हम श्योर नहीं होते, बच्चे पढ़ाई के कारण बाहर जाते हैं और उनकी लाइफस्टाइल क्या है ये हम इस बारे में बहुत श्योर नहीं रह सकते। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के पहले 9 साल के समय ही आप लगवा दें और इससे आपका इससे बचाव फिर हो पाता है।
1: एक तो बचाव के लिए आपने HPV वैक्सीन का हमें बता दिया, लेकिन इसके अलावा भी विमेन हेल्थ के लिए

बता देते हैं कि हमारा फोन नंबर है 2342-1080, 2342-1082। अगर आप दिल्ली से बाहर से फोन करें तो 01 लगाना ना भूलें। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। हमारी फोन लाइंस खुली हैं, बातें हम और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

0: राधे।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन थ्रू वैक्सीनेशन पे। तो डॉक्टर साहब, एक मैसेज है हमारे पास, ये है, लिखते हैं विवेक फ्रॉम मेरठ। ये लिखते हैं, हाय डॉक्टर, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये लिखते हैं, आर मेल वॉट्स आर ऑन द फेस, हैंड्स और अंडर द आर्म पिट्स, यूजुअली कॉज्ड बाय द HPV वायरस एज वेल। थैंक्स
2: जी, HPV

0: मैंडेटरी है, आपको हर 3 साल पे पैप स्मियर, जिसको कि हम कॉमन भाषा में पानी का जांच कहते हैं, कि पानी का जांच कराना चाहिए, या फिर अगर आप एचपीवी टेस्टिंग है आपके सिटी में उपलब्ध, तो हर 5 साल में एचपीवी टेस्टिंग कराएं टिल 65 ईयर्स हों और आपको कोई साइन सिम्टम्स नहीं हो।
1: कई बार देखा जाए तो आम लोगों में ये सोच होती है कि कैंसर क्यों होगा, हम क्यों लगवाएं ये वैक्सीन। तो हम चाहते हैं कि आप हमें हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि कैंसर से बचाव के लिए ये कितनी ज़रूरी है।
0: जी, कैंसर जो है वो किसी को भी हो सकता है। ऑल्दो जो मैंने कुछ चुनिंदा रिस्क फैक्टर्स बताए, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, जिनके अर्ली एज एट इंटरकॉर्स है, ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, बट इस नॉर्मल महिलाओं को भी ये एचपीवी इन्फेक्शन हो सकता है और फिर वो डेवलप कर सकता है सर्वाइकल कैंसर्स। मैं खुद अपने डॉक्टर कम्युनिटी में ऐसे डॉक्टर्स को जानती हूँ जिन्होंने अपने

0: होगा, और उसको लगाने से उनको आगे जाकर माँ बनने में भी कोई तकलीफ नहीं होती है, उनके ओवरऑल हेल्थ पे इसका कोई बैड इफेक्ट नहीं है, और इसको लगाने पे बिल्कुल कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो HPV वैक्सीन जो है वो 9 साल की उम्र के बाद आप बिना हिचक हिचके हुए आप लगवा सकते हैं।
1: जैसे कि हम सर्वाइकल कैंसर पे हम बात कर रहे थे, महिलाओं को हेल्दी रखने के लिए बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो हेल्दी रह सकती हैं, तो आप कैसा लाइफस्टाइल, कैसी डाइट सजेस्ट करेंगी कि जिससे सभी महिलाएं फिट रहें, फाइन रहें और हर बीमारी से उनका बचाव रहे?
0: जी, आम तौर पे ऐसा होता है कि महिलाएं सोचती हैं कि हम घर में काम कर रहे हैं, हम तो पूरे दिन काम ही कर रहे हैं, और सोचती हैं कि इतना काफ़ी है हमारे लिए। जी, वो बिल्कुल काफ़ी नहीं है। आपको जो है हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब अपने ऊपर डेडिकेटेड टाइम देना होगा, आपको एटलीस्ट आधा घंटा जो है वो खुद के ऊपर समय देना चाहिए, एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग इन द फॉर्म कि आप जो है वो हरी पत्तेदार सब्जियां लें, प्रोटीन वाली चीज़ें लें डाइट में, और मतलब ऐसा ध्यान दें कि आपके खाने में ऐसा तो नहीं, बहुत बार देखा गया है कि घर की औरतें जो हैं वो सिर्फ चावल और सब्जी खा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको दाल देना चाहिए अगर वो नॉनवेज नहीं लेती हैं तो, और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन डाइट भी ले सकती हैं, और वही है हेल्दी डाइट रहना है उनका, एक्सरसाइज करते रहना है हर दिन जो है, एटलीस्ट 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, और मतलब जो सरकारी

अलग-अलग तरीके हैं। एक तो कहते हैं कि थर्मल अब्लेशन कहते हैं उसको, कोनाइजेशन कहते हैं, और लार्ज लूप एक्सीजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जोन, तो लीप थेरेपी कहा जाता है उसको। तो ये सब तरीके जो हैं, इसमें हम जो सर्वाइकल रीजन अफेक्टेड है उस एरिया को काट के बिल्कुल हटा दिया जाता है, बिल्कुल शुरुआती दौर से। तो इससे फिर आप सर्वाइकल कैंसर के होने से आप बच सकते हैं। दूसरा है कि अगर आपका सर्वाइकल कैंसर हो चुका है लेकिन वो अर्ली स्टेज में है, तो अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि एज क्या है। अगर महिला की एज जो है वो एस कम उम्र है और उसको अभी और आगे जाके बच्चे करने हैं, तो उसमें हम फर्टिलिटी स्पेयरिंग ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब कि ऐसा उपाय करते हैं जिससे कि वो आगे जा करके बच्चा भी कर सके और मतलब कैंसर से मुक्त भी हो सके। तो उसको कोनाइजेशन कहते हैं, या फिर रेडिकल ट्रैकिलेक्टमी कहते हैं, जिसमें सर्वाइकल कैंसर जितना अफेक्ट हुआ है उतने एरिया को काट करके बच्चेदानी के मुंह को हटा दिया जाता है। अगर मान लीजिए कैंसर बहुत आगे तक चला गया है, तो उसमें जो है वो हिस्टरेक्टमी करनी होती है, यानी कि यूट्रस को निकालने का ऑपरेशन किया जाता है, और साथ में जो फलोपियन ट्यूब्स होता है, ट्यूब और अंडेदानी जो होती है ओवरी, उसको भी रिमूव किया जाता है। और सिमिलरली जितना ज़्यादा स्प्रेड है, तो जितना मैक्सिमम हम मतलब

नमस्कार, आप पेश हैं एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा जारी। लोकसभा ने कल इसे पारित कर दिया, लोकसभा की भी कार्यवाही जारी। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का

नंदन वंदन अभिनंदन। आप सभी दोस्तों का संदेश टू सोल्जर्स के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लाखों दिलों की धड़कन छुपी हुई है, क्योंकि

0: ये निर्णय लिया कि आपको भारतीय सेना ही ज्वाइन करना है?
1: अब ये तो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद है कि हर स्कूल में ये किस्सा है कि एक लड़की थी जिसके ऊपर हमारा भी क्रश था, और उस लड़की को फौजी पसंद थे। उस समय तो हमें रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन मेरे फादर फौजी थे, कैंटोनमेंट्स में हम रहे थे, एक अलग तरीके की लाइफ देखी थी। हालांकि हमें वो लाइफ कंफर्टेबल लगती थी, क्योंकि हमें जब तक समझ आई कि फौज में हमारे फादर क्या कर रहे हैं, तो उनका ओहदा जो था वो थोड़ा बढ़ गया था, तो इसलिए हमें तो सारा कंफर्टेबल लगा। हमने ये तो नहीं देखा कि 4 बजे कब उठे होंगे, जो यंगर डेज होते हैं। सो मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये जो दो अट्रैक्शन हैं, जो मुझे एकेडमी सॉरी एसएसबी में भी पूछा गया था,

कर लें, और अगर कल वो आर्मी चीफ भी बन जाता है और जब आपसे मिलता है और आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि सर मैं वहां था, अरे तू वहां था, मतलब वो जो आप अगर एक आर्मी चीफ को भी देखेंगे उसके एग्जैक्ट वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं कि अरे तुम भी वहां थे, तुम कहां थे। दैट अमाउंट्स टू के पीछे का दोस्ती आगे बढ़ रही है और आगे की दोस्ती जुड़ती चली जा रही है। इससे बड़ी मुझे नहीं लगता।

0: वैसे आज स्टूडियो की खिड़की में से भी ना खुशियां ताक झांक रही हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिनकी किसी कहानियां जब आप सुनेंगे तो आप उनकी वीरता के गाथा जग जग तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो उनसे जाननी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना खुश मिजाज है, जिस तरह से हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं कर्नल साहब, मैसेज यही आ रहे हैं कि आपकी खुश मिजाजी सुनकर ना सब लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है आपको सुनने में। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वो पल जिस वक्त आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, उससे पहले बहुत सारे सवाल जवाब जरूर हुए होंगे। घर पर किस तरीके का माहौल था? बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था क्या? घर से आपको ये हमेशा हिदायत दी जाती थी ज्वाइन करना है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? किस तरह से आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, ये कहानी जरूर सुनाए।
1: मुझे लगता है कि फौजी अफसर के बेटे होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि घर में हिटलर रूल चल रहा होता है।
0: अच्छा।
1: हमारे लिए उनको हम उस समय हिटलर रूल बोलते थे कि ड्राइंग रूम में आप आ नहीं सकते, सोफे के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, चारपाई में कूद नहीं सकते, अगर डाइनिंग टेबल पर बैठना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही बैठना है, आप जब तक खाना स्टार्ट नहीं कर सकते जब सब ना आ जाएं, खाना क्लोज करना है तो जब ही करना है जब कोई सारे क्लोज कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, एटलीस्ट मुझे लगता था इस सबसे हट के खाना चाहिए कि उस रोटी के अंदर हम आलू की सब्जी भरें, उसको गोल गोल घुमाएं और उसको पोंगा बनाकर खाते हुए घूमते जाएं। बट ये अलाउड नहीं था। सो ये मैं ज़रूर मानूंगा। बट एट द सेम टाइम ज़्यादातर घरों में क्योंकि यही था, तो जब हम बाहर भी जाते थे तो कोई लड़का या लड़की जो कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के होते थे, अगर इस तरह की कोई हरकत करी तो वो बाकी टोक देते थे।

0: वो एसएसबी एग्जाम देने नहीं गए.
1: अच्छा
0: सो 8 के 8 ने आईआईटी के एग्जाम पर जोर लगाया और 8 के 8 में से सिर्फ वो एक आईआईटी निकल गया. हम 7 रुक के रह गए. मतलब आप सोचिए कि दूसरे के ऊपर जाने. और फाइनली ग्रेजुएशन के बाद उन्हीं 7 में से हम 4 वापस आर्मी के अंदर आ गए.
1: वाह क्या बात है, क्या बात है. कहते हैं कि कुछ नियतियां तय किया होता है और कुछ आपकी इंस्टिंक्ट्स ने, यानी कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आप उस रास्ते पर जरूर चलते हैं. तो एनडीए के थ्रू तो एंट्री नहीं हुई आर्म फोर्सेस में, फिर कौन सा रास्ता था जिसकी वजह से आप पहुंचे?
0: वो हम ग्रेजुएशन, आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन, वो अपना शिमला में था मैं, हिमाचल यूनिवर्सिटी से. वहां पर माहौल में

0: बॉर्डर रोड्स के और एक और लड़का था, तो हम चार थे. तो सडनली वो जो एनसीसी का था, आज भी मुझे याद है, सतीश सूद उसका नाम था, वो अंडर ऑफिसर होता था. तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंड सिर्फ इसलिए था, नॉट बिकॉज ऑफ एनसीसी, क्योंकि मैंने एनसीसी नहीं ली थी. क्योंकि एनसीसी की सैटरडे को जब परेड हो जाती है तो चाय और समोसे मिलते हैं.
1: अच्छा.
0: तो हमारा अट्रैक्शन होता था कि चाय और समोसे मिलने चाहिए.

0: एग्जाम देने के बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन का फाइनल डे का एग्जाम दिया, उस दिन शाम को मैंने कॉरपोरेट हाउस में जस्ट लाइक दैट स्पेकुलेटिवली इंटरव्यू दे दिया, और उस इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने थ्रू कर दिया और उन्होंने बोला कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। सो मतलब मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरी जॉब लग गई।
1: अरे वाह,
0: और उस जॉब के साथ ही साथ एक और खुशखबरी आई कि आपका CDS एग्जाम क्लियर हो गया है,
1: वाह
0: तो वहां से कॉल अप लेटर

0: तो वहां पर एक बड़ी अच्छी सी ड्रिल होती है कि बच्चा लोग गाड़ी में चढ़ो जो रिजेक्ट हो गए, साहब लोग आप आगे आओ।
1: अच्छा,
0: तो हम उस दिन साहब बन गए सडनली। सो आई हैड टू एक्सटेंड माई लीव के भाई चलिए अभी 3 दिन और मेडिकल होना है, तो इसने मेडिकल होता रहा। अब वो पता नहीं क्या किस्मत, यही बोलते हैं कि हर चीज पहली बार में होती चली गई। और उसके लिए आज मैं जरूर ये मानता हूं कि आई वाज डेस्टिन्ड।

0: चाहते थे, अपनी तरह से चीजों को करना चाहते थे। आपने कहा कि शैतानियां भरपूर करते थे, शैतानियों से ऊपर शैतानी करती, जिसकी वजह से आप स्कूल कैप्टन बन गए 2 बार। क्या वो शैतानी फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद बरकरार रही, या एक अलग सा ड्रिफ्ट आ गया आपकी जिंदगी में? सोचने समझने की क्षमता या सोचने समझने का नजरिया पूरा बदल गया सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद?
1: नहीं, बट मुझे लगा कि मैंने फौज में बढ़ चढ़ के शैतानी करी।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अगर इनके कैनवस को देखूं ना मैं, तो मैं कहूंगी हिज कैनवस इज लार्जर देन लाइफ। वाई? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के नाम किया है, और वो हिस्सा ना आज भी देश की ही बात करता है। लेकिन कहते हैं कि जिंदा दिली व्यक्ति को हमेशा हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए भी जीने के लिए प्रेरित करती है, और इसकी जिंदा दिली की वजह से हमारा आज का ये शो, आज का ये कार्यक्रम किसी और दिशा में है। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दिशा में ना गोते मार रही हूं। अब कर्नल सिंह, आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। भले ही आपने अपनी जिंदगी, आपकी सोच, आपका परसेप्शन जीवन जीने का मौज मस्ती के साथ रहा हो, पर मैं ये बात जरूर कह सकती हूँ कि आपसे लोग डरते भी बहुत होंगे। जब डिसिप्लिन की बात आती होगी, जब फौज में रहे, जब कमांड किया, जब नेतृत्व किया, जब फैसले लिए, तो माहौल उस वक्त कुछ और रहा होगा, निश्चित है।
1: नहीं, देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, मैं मान लूंगा इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर वो डिसीजन जो लिया उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। अगर मैंने अपने बैटरी को या अपनी कंपनी को बोला कि हम इस दिशा में जाएंगे और मालूम है कि वो दिशा गलत है, तो मैं उसमें सबसे आगे चल रहा था कि यस,

0: पिताजी की क्या प्रतिक्रिया थी?
1: नहीं, पिताजी एक्चुअली बहुत ज्यादा कीन नहीं थे, क्योंकि देखिए ये जब 85, 86, 87 ये जो वो वाला दौर है जहां आर्मी में तनख्वाह बहुत कम थी, तब तक मेरा कॉरपोरेट हाउस में ऑलरेडी जॉब लग गया। 2800 रुपये मेरे को पहली तनख्वाह वहां मिली, और फौज में वापस अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो जीरो थी। ये तो हमारी अगेन किस्मत है कि हमें 1500 रुपये महीना वहां पर भी अलाउड हो गए, लेकिन एकेडमी के रूल्स अपने होते हैं, वो 1500 आपको कभी मिले नहीं, बोला आपके जमा होते रहेंगे,
0: अच्छा
1: आप नहीं तो खर्च कर दोगे, मतलब खाने पीने में दाएं बाएं कर दोगे। माई फादर वॉज वेरी क्लियर कि भाई एक काम करो बेटा, देखो देख लो, अच्छा खासा तुम्हारे पास 2800 का जॉब है, अब आप जीरो पर आ जाओगे। और उस समय एक लेफ्टिनेंट की, सेकंड लेफ्टिनेंट की जो पे थी वो भी 2300 रुपये थी, मतलब 2800 से भी कम। उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझे अलाउ किया। हालांकि मैं अब अगर बाद में देखता हूं ना, सबसे बड़ी खुशी अगर कहीं किसी को हुई थी तो मुझे लगता है मेरे फादर को हुई थी।
0: अपने बेटे को अपने पद चिन्हों पर चलता देख

0: जिस ऑपरेशन पे आपने हिस्सा लिया गौरवान्वित महसूस करते होंगे बहुत ज्यादा।
1: गौरवान्वित तो बहुत अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी।
0: अच्छा,
1: मुझे तो लगता था आर्मी चीफ जो है वो टाइम पास कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ। मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज, मेरे लिए कोई कमांडिंग ऑफिसर जीओसी कुछ नहीं, मुझे लगता था मैं ही हूं, मैं मतलब मैं और मेरी कंपनी, हम दो ही हैं जो दुनिया ठीक करने वाले हैं, पूरी काउंटर इंसर्जेंसी को ठीक करने वाले हैं। सो गौरवान्वित मेरे को लगता है बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा मेरे लिए, हम लोग बहुत ऊंचाई पर थे।
0: वाह क्या बात है। ये जो फीलिंग है ना आपकी कि सब कुछ अब मुझ पर निर्भर करता है और मेरे ही मेरे फैसले से काया पलट हो सकती है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि यू वर अगेंस्ट एनीथिंग। आपने अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से पकड़ लिया था कि अब जो करना है मुझे करना है, सब कुछ मेरे कंधों तले है। क्यों, सही कह रही हूं ना मैं? करना
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि हम ही उस जगह की डेस्टिनी बना रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं है मुझे। आज भी अगर मैं बोलूं तो आपके स्टूडियो में बैठकर मुझे नहीं लग रहा कि आप बोल रही हैं, मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं।
0: वाह क्या बात।
1: मैं आपका शो कंडक्ट कर रहा हूं मुझे, और ये मैंने अपनी फौज में जिया है, अपने जवानों के साथ जिया है, अपनी रेजिमेंट के साथ जिया है। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं आर्मी के लिए लड़ रहा हूं या मैं देश के लिए लड़ रहा हूं। मैं लड़ रहा था

0: काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है, आज तक वो आपको मिल गई। अच्छा, अब कारगिल युद्ध की अगर बात करें, ये आपके जीवन का शायद एक ऐसा चैप्टर जरूर रहा होगा जिसके बारे में बार बार जिक्र करना चाहते हैं।
1: मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है हमारे लिए। कारगिल हमने अपने इस हाथ में अपने बंदे खोए हैं। आज भी मेरे घर मेरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये लाल हाथ दिखते हैं। कारगिल वो लड़ाई थी जो कभी नहीं लड़ी जा सकती फिर से, ना पहले ना बाद में।

बात का सबूत है, आपके एक एक लफ्ज इस बात को यहाँ साबित कर रहे हैं कि जब एक सोल्जर, एक सैनिक मैदान जंग में जाता है तो यही सोचकर जाता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं जा ही रहा हूं देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए। आप और उन तमाम, आप और 527 टोटल 528 वो सभी सोल्जर्स, उनको हमारी ओर से नमन। हम यही कहते हैं, अगर आप नहीं तो हम नहीं।

0: नहीं जी पाए तो भी आपके पास मौका है, अपने देश के लिए जरूर जी लो। देश के लिए जी लिए तो आप ये समझ लेना कि आप फौजी की जिंदगी जी लिए।
1: बहुत खूब। यहाँ पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ जो मैं दिल से चाहती हूँ पूछूँ। एक वो पल जहाँ आप बहुत मेजर ऑपरेशन में हैं, जहाँ पे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, जहाँ पे आपका नेतृत्व, पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन लेने की ताकत, जिस वक्त निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात करें, जहाँ आपके बहुत सारे साथी पल पल क्षण क्षण साथ छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है। मैं जानती हूं कि भारतीय सेनाएं आपको तैयार करती हैं, इस मौके के लिए भी तैयार करती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के जहीन व्यक्ति आप खुद हैं, आप जैसे व्यक्ति के लिए या उस उन सभी सैनिकों के लिए, उन सभी ऑफिसर्स के लिए, उस वक्त डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है?
0: इम्पॉसिबल होता है कुछ डिसीजन लेना, और आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं। अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं, आर्टिलरी में एक फायर होता है जिसको बोलते हैं फायर SOS, सेव आवर सॉल। दैट मींस जो OP ऑफिसर या इन्फेंट्री है वो अपने ऊपर फायर बुलाती है, और जब वो कह देता है कि टारगेट विक्टर ये, और जब मैं उसे गन एंड पर देखता हूं और मुझे दिखता है ये तो अपने ऊपर फायर बुला रहा है, सोचिए उस टारगेट के ऊपर जब 18 गोले आके क्या बचेगा। तो इसलिए हम उसमें फिर से पूछते हैं, दूसरी बार पूछते हैं, चेक फायर, सेफ्टी फायर, सारी चीजें ट्राई कर ली उस एक मिनट के अंदर, लेकिन फाइनली जब डिसीजन लेने की बात आई तो वो भोंपू को मैं पकड़ता हूं और मैं कह देता हूं फायर,
1: क्या?
0: और वो फायर बोल

दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों

0: बचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

तो भाई आज शाम का क्या प्रोग्राम है? कुछ सोचा है आपने कि आज क्या करने वाले हैं? मौसम जरा साथ नहीं दे रहा है। क्यों दोस्तों? बरसात इतनी अच्छी वाली अभी यहाँ हुई नहीं और उमस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है। तो चलिए ऐसा करते हैं, कहीं कूल कूल जगह पे बढ़िया सा प्रोग्राम देखते हैं। और वो हो सकता है आज कहाँ? इंडिया हैबिटेट सेंटर का स्टाइल ऑडिटोरियम, क्योंकि

इसी जोश के साथ स्वागत करना है आपने दिल्ली में कांवड़ियों का। जी हाँ, देखिए जैसे ही सावन का महीना शुरू होता है वैसे ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो जाती है और हर वर्ष की तरह इस साल भी लाखों कांवड़िए जगह जगह से पवित्र गंगा जल अपने कांवड़ में भर कर दिल्ली पहुंचेंगे और फिर यहां से वो जाएंगे आगे यूपी, हरियाणा और राजस्थान। तो बस इन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ बहुत स्ट्रिक्ट ट्रैफिक नियमों का पालन हमें भी करना होगा और उन्हें भी। जैसे 11 अगस्त तक ये यात्रा चलेगी तो इसको ध्यान में रखते हुए एक कोशिश की गई है कि कांवड़ यात्रा के दौरान जीटी रोड, वजीराबाद रोड, विकास मार्ग, आशाराम त्यागी मार्ग, पुस्ता रोड और लोनी रोड पर हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का मूवमेंट बैन रहेगा। ये हैवी व्हीकल्स एन

मिल सके। वैसे नॉर्मली 10 मिनट के अंतराल पर उन्हें मिलती है। और तो और, क्योंकि जैसा हमने हमने बात की अभी कि वो इतनी कावड़ लेकर आते हैं, तो मेले से हरिद्वार जाने वाले भी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ है और उसको देखते हुए 120 अतिरिक्त ट्रेन फेरे लगाएगी। कई ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव देने और 2 नियमित मेमो ट्रेनों का हरिद्वार तक विस्तार करने का भी फैसला लिया गया है। दिल्ली जंक्शन श्यामली मेमो 29 जुलाई से 13 अगस्त तक दिल्ली से हरिद्वार और 30 जुलाई से 14 अगस्त तक हरिद्वार से दिल्ली के बीच पहुंचेगी। तो अब आपको पता है ना कि आपको क्या करना है। सबका सम्मान करना है, जहां तक हो सके मदद करनी है सभी की, जो कावड़ है उनकी भी और जो यात्री सड़क पर है, और अगर उन्हें थोड़ा कुछ डिफिकल्टीज हो रही है तो सबके बीच जहां तक हो सके हमें एक ब्रिज का काम करना है। और जब जब गुस्सा आने लगे तो मन में प्यार से कहे हर हर महादेव, और हमारे अंदर आ जाएगी एकदम पॉजिटिव एनर्जी। तो चलिए चलते हैं मिलने कांवड़ियों से।

ये दिन मनाया जाता है। हम सबको एकजुट होकर इसके अगेंस्ट लड़ना होगा और इसीलिए इस बार का थीम है ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम। हम सब जब एक हो जाएंगे तो फिर कोई भी इस तरह से न हमारा न हमारे अपनों का फायदा उठा सकेगा।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो।

0: वाणी आकाशवाणी
1: और ये है आपकी वाणी आकाशवाणी पर मैसेज मसाला मिक्स। मैसेज मसाला मिक्स में मैं हूँ आपके साथ रमा यादव। बहुत दिनों के बाद मिले हैं ना। 9868107070 वो नंबर है जहाँ पर हम बहुत सारी बातें करेंगे। वैसे भी सावन शुरू हो गया आज से, झूले डाल लिए होंगे आपने। मैं रोज़ सुन रही थी कल का मैसेज मसाला मिक्स सुन रही थी। बहुत सारे मैसेजेस आप कर रहे थे, अपने बचपन को याद कर रहे थे। तो आज भी कॉन्टिन्यूएशन में कुछ वैसा ही है। कैसा है बारिश और सावन का इंतज़ार, आप कैसे करते हैं, आप क्या करते हैं, वही कुछ मैं भी बात करने जा रही हूँ जो कल के भी मैसेज मसाला मिक्स में बात थी। लेकिन हर बार बात तो अलग होती है ना, क्योंकि हम बदल जाते हैं थोड़े से, तो है ना। चलिए गाना सुनते हैं फिर सावन की बात।

आज आपसे बातें करनी, कई बार बहुत दिनों बाद मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस बातें करते रहे। और ये इतने सारे जो मेरे प्यारे प्यारे मैसेजेस आ गए हैं, गुड इवनिंग दोस्त, वेलकम बैक, सौरभ अनेजा गाजियाबाद से, थैंक यू सो मच दोस्त। सावन का माह आया, बचपन घेवर मिठाई की यादें ताज़ा हो रही हैं, रिमझिम झूलों में झूलना मस्ती की यादें, बुढ़ापे में बचपन याद आ रहा है, महिलाओं का तीज त्यौहार, कांवरियों का जल अभिषेक, पूजा संस्कारों की यादें ताज़ा हो रही हैं। अनिल शर्मा सरिता विहार से लिख रहे हैं मेरे नाम। मैं आपको बताऊं कि जब हम छोटे थे तो रहते थे पुरानी दिल्ली में, तो वहाँ एक बाग था जिसको जनाना बाग कहा जाता था, जनाना माने महिलाएं, उनका बाग। और वहाँ जाके इतना खूबसूरत था उस समय में वो अंदर से, कि वहाँ जाके हम सबसे ऊंची जो पेड़ की जो डाल होती थी ना, उस पर झूला अपना बहुत मजबूती से डाल देते थे। और क्या बताऊँ आपको कि आपसे बातें करके ना वो वाली यादें फिर से ताज़ा हो जाती है। कंचन सोनिया विहार दिल्ली से लिख रही हैं, गुड इवनिंग मैडम, कैसी हैं आप, प्रोग्राम

कुछ तो ऐसी खास बातें होंगी ना जो बहुत खास होंगी। सावन आया, हरियाली ने ओढ़ी फिर से धानी चुनर, और सदा हमारी सदा से महका गांव और हर नगर, रिमझिम बूंदे राग सुनाए, झूम उठे वन खेत शजर, सौंधी माठी मल्हार छेड़े, भीग उठे मन के अंतर, मोर पंख फैलाकर नाचें, कोयल गाएं मधुर पुकार, पुरवैया के कोमल झोंके बिखराएं खुशियों का संसार, धरती का कणकण गुनगुनाए, अंबर गाए प्रेम का स्वर, सावन आया संग ले आया जीवन का अनुपम उत्सव भर। मोहम्मद सरफराज आलम जो कि हरदर्शना बिहार से इन्होंने स्वरचित कविता लिखी है, और कैसा हमें सावन याद दिलाता है ना कि प्रकृति की कितनी कितनी कितनी इम्पोर्टेंस है हम लोगों की लाइफ में, क्योंकि कोयल ना हो, मोर ना हो, पपीहे ना हो, दादुर ना हो, तो फिर कैसा सावन। सावन तो पहाड़ों में है, मौसम बिल्कुल साफ, पानी के नए स्रोत, कहीं प्राकृतिक आपदाएं और भोलेनाथ जी के व्रत, घनी गहरी काली रातों में जुगनुओं का घूमना, असम में आपदा पीड़ितों के लिए प्रार्थना करते हैं कि

कविता जी, आपके केंद्र से सभी प्रोग्राम मुझे अच्छे लगते हैं। कुमार गौरव, इंदुकर नेशनल पार्क, तालुका छिमोर, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से लिख रहे हैं। हेलो हेलो जी, ये लिख रहे हैं मुबारक खान मेवावत, भरतपुर राजस्थान से। सावन के महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके एफएम की वॉइस बहुत कम आ रही है, वॉइस ठीक नहीं आ रही। ओहो, बारिश की वजह

मैं अनवर, अभी मैं बाहर हूँ देश से और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये गाने सुनना। तो ठीक है, अगर आपको ये गाने सुनना बहुत अच्छा लग रहा है तो हमें ये गाने सुनवाना बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं एक ही और ऐसा गाना प्ले कर रही हूँ जो आपको शायद बहुत पसंद आए।

जी मुझे भी याद आ रहा है। शुभ संध्या रमा जी, श्रावण मास की कावड़ यात्रा के पहले दिन की हार्दिक शुभकामनाएं सभी शिव भक्तों को। और कह रहे हैं हमारा मैसेज शामिल कर लीजिए, तो बिल्कुल जी मैंने आपका मैसेज शामिल कर लिया है, क्यों नहीं करूँगी। अच्छा, बहुत सारे मैसेज है और थोड़ा लेट मैंने आपका मैसेज शामिल किया, आई एम सो सॉरी। और ये जो मैसेज आया है, काफ़ी सारे मैसेज होते हैं ना, कई बार स्क्रॉल करो तो ऊपर नीचे

0: शहनशाह का सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
5: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

0: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, यू आर ट्यून्ड टू हिट्स एंड मेमोरीज ओनली ऑन आकाशवाणी FM रेनबो ब्रॉडकास्टिंग एट 102.6 megahertz. Our next artist has serenaded listeners for decades with his smooth baritone, Engelbert.

अभियान तूफान के अंतर्गत 62 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और 58 नए मामले दर्ज किए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। पाकिस्तानी सशस्त्र बलों की गोलाबारी में 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। अभी आप सुन रहे थे समाचार और अब आगे लिए चलते हैं आपको हमारा जो अगला प्रोग्राम है म्यूजिक मस्ती की तरफ। और जो म्यूजिक मस्ती है वो बहुत सारी मस्ती देता है और ये जो मस्ती है ना, ये मस्ती ही हमें सदाबहार बनाए रखती है।

0: And rainbow.
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

0: बार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है

आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है।

साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। सरकार ने एक टॉल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहैबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। मानस के साथ साझा की गई हर जानकारी गोपनीय रखी जाती है। भारत को ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे

0: करना क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

यादें वो शो जहां हर गाना आपको ले जाएगा सुनहरे 90 के दशक की यादों में। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत कुमार सानू की इस गीत से।

शाम को पुराने हो जाते हैं। 90s का वो दौर सिर्फ गानों का नहीं बल्कि मासूम एहसासों का भी दौर था। उस समय ना सोशल मीडिया था, ना ऑनलाइन चैट्स थे, बस एक चिट्ठी, एक मुस्कान और रेडियो पर बजता एक पसंदीदा गाना ही काफी होता था दिन को खुशगवार बनाने के लिए। ये अगला ट्रैक मैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में आप तक पहुंचा रही हूँ। फिल्म कयामत से कयामत तक का ये गाना, अकेले हैं तो क्या गम है। Awesome.

देते थे और मैं थैंक यू कहती थी उपासना को कि एटलीस्ट तुमने चिट्ठी के जरिए मुझे सजेस्ट किया इस फिल्म को। सब बड़े हो गए हैं, बहुत ही जानी मानी डॉक्टर बन गई उपासना, ऑन्कोलॉजिस्ट, और कैंसर पे बहुत अच्छा काम किया उसने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना में वो हमें छोड़कर चली गई इस दुनिया से। एंड यू नो, जब भी मैं इस फिल्म के गाने सुनती हूँ ना, मुझे उपासना, मेरी वो पक्की वाली सहेली उपासना सक्सेना, बहुत याद आती है।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक
1: खूबसूरत परिधान।

0: घूमने वाले सैंड ड्यून्स तक।
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

विशेष भक्ति चैनल आराधना 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक बहुत ही मशहूर जुमला है, दिल है कि मानता नहीं, हालांकि गाना भी है, पूजा भट्ट और आमिर खान पर फिल्माया हुआ। कह सकते हैं कि इंसान जो है ना, वो इमोशंस के आगे झुक जाता है, चाहे दिमाग उसे कितना भी समझाए। खैर, दिल है कि मानता नहीं, कुछ रिश्ते, कुछ यादें और कुछ एहसास वक्त के आगे बढ़ जाते हैं, मगर दिल समझ नहीं पाता, मानता नहीं और याद करता उन लम्हों को।

0: लाएं। साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, एसएमएस, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

जो होता है अक्सर वो अच्छा ही होता है। आज भी हुआ, उम्मीदों की किरण पर अलम की स्याह बादलों का राज भी हुआ। सपनों की गठरी लेकर चल रहे थे हम जिस कश्ती पर, किनारे पर आने से पहले ही वो तबाह हो गया। भीगता, डूबता, रोता, बिलखता, जब एक इंसान किनारे

जिंदगी में जब सब कुछ एक साथ और जल्दी जल्दी करने की ख्वाहिश होती है, सब कुछ तेजी से पा लेने की तलब होती है, तो हमें लगने लगता है कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। शायद आपके साथ होता है कैसा?

जब गजल में बात हो रही है चले गए गीत, तो अब हमें भी चलना चाहिए क्योंकि रुखसती का वक्त हो चुका है। हमसे मत पूछिए किधर जाएंगे, थक गए हैं बहुत अपने घर जाएंगे। बेवजह ही हम परेशान हैं जिंदगी के लिए, कई दफ़ा ये लगता है कि जिंदा कहाँ है जो मर जाएंगे। इसलिए ये कहती हूँ अक्सर कि जिंदगी एक बार मिली है, जैसी मिली है जितनी मिली है बहुत खूबसूरत है, जी लीजिए इसे। अपना खूबसूरत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, शब खैर, इजाज़त चाहूँगी।

यादव और यशवीर सिंह ने क्वालिफाई किया। वहीं विशाल टी भी 400 मीटर दौड़ के फाइनल में पहुंचे। दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का तीसरा संस्करण आज से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शुरू होगा। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए

हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह पर मैं और मेरे साथी आपको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं, और जिस शौक से आप आजादी का जश्न मनाने यहां आए हैं उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात यौम आजादी के शानदार जश्न पर मैं और मेरे साथी आपके सामने एक कव्वाली पेश करने वाले हैं, मगर इससे पहले मुझे इतनी गुजारिश करनी है कि आज ये कव्वाली महज कव्वाली नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का, मेरी मोहब्बत का बहुत बड़ा इम्तिहान बन गई है। हादसा अक्सर इंसान को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर देते हैं,

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी किया, कहा सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक भी पारित किया। दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल दिया।

वाणी आकाशवाणी। रात्रि के 1:03 हुए हैं। शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जिसका नाम है सुहानी रात।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: अतीत से बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। FM रेनबो पर रात 9 बजे मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 FM रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया

प्रस्तुत है एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी किया, कहा सरकार देश में विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक भी पारित किया। दिल्ली सरकार ने नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने का

0: आपकी वाणी आकाशवाणी। 2:03 हो चुके हैं और आइए, यह बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम का समय है, वो चला है जिसका नाम है भुलाए ना बने।
1: जय शिव शंकर के सुपरस्टार।

0: आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती, समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए।

0: FM रेनबो पर रात 9 बजे।
1: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ स्टूडियो घड़ी में 3 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार मेरे यानी अर्चित के साथ। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश जारी किया, कहा सरकार देश के विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए लगातार ठोस कदम उठा रही है। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्र

0: वाणी आकाशवाणी।
1: 3:03 हो चुके हैं। हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है मिडनाइट मेलोडीज।

दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप।

हमले किए, जिससे पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुईं। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बीच विरोध प्रदर्शन तेज हुए। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुष के 110 किलोग्राम वर्ग में 388 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। वहीं महिला डिस्कस थ्रो में सीमा कालीरमन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। भारत के कुल पदकों की संख्या 17 हुई। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता। दिल्ली प्रीमियर क्रिकेट लीग का तीसरा संस्करण आज से नई

0: 4:16 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सारे गामा।
1: कोयल सी तेरी बोली कु कु
0: हाय
1: कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
0: हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा

0: रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
1: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 5:03 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना।

थोड़ी गपशप थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।